कोई डेगड़िया बढ़िया कहना डेगड़िया जाएगा कहना सोखता है कादर के सोखते जिया लगा दे साढ़े कार कमाने तो साढ़े कार आए तो छोड़ने पाए के की पाहरी के की बोड़ बुझी नहीं जाए बोड़ बुझी नहीं जाए

सैदा सैदा बल्ले आरे, सैदा सैदा बल्ले आरे सचिया, सैदा सैदा बल्ले आरे तो प्यारे दासे हमारी वाहिगुरु तो दिया गे यारे।

साहब तेरा सचिया बादशाह जियो बेंड साहब तेरा कहुना नके साहब तेरी वाड़ी आई वायर कहुना नके साहब तेरी वाड़ी आई कोई ना वो ना गया ने मेरा ना वो ना जाने मेरा सचिया बादशाह कोई ना वो ना जाने मेरा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठौ नंदन प्रथम राग पहरौ वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम पहर भी बिलावली पुनिया की गावे बंगली पुनस लेखी की पही बारी ए पहरौ की पांचौ नारी पंचम हरख दिशाख सुनावहे बंगाल मद माधव गावहे ललित बिलावल गावही अपनी अपनी पहांत अष्ट पुत्र पहराव के गावे गायन पात्र द्वितीय

माल राग को सक संग लाई, मारू मस्त अंग मेवारा, प्रबल चंड को सक उभारा, खौखट अपहरा नद गाए, अष्टमाल को सक संग लाए, पुन आयो हिंडोल, पंचनार संग अष्ट सुत।

त्वा प्रसाद कवित खूकमल हरि गज गद हाविभूत दारिक दुआ मसान बास कयो करत है घुगमट बास लगे डोलत उदा सिमरिक तरवर सदीव मोन सदई मरत है बिंद के सदयता ही जकी बटैया देत बंदरा सदीव पाए ना गई फिरत है अंगना अधीन काम क्रोध मैं प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कह सके तरत है भूत बन चारी छित छाउना सब दूता धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है त्रिण के भछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है नब के उड़िया ताहे पंछी की बटैया दे बगुलाब डाल ब्रिक ध्यान ठानियत है जिते बड़े ज्ञानी तेनो जाने पवखानी ना है असना प्रपंच मन

सैयता है बूजरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सुजरैया का बखानी है फल के पछैयाता है बांदरी के जैया कहे आद से फिर तो भूत कह पछानी है जल के दरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भचैया सो चकोर सम मानी है सूरज सिवैयाता है कौल की बढ़ाई देज चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है नारायण कछ मछ दिंदु।

जैसे एक आग ते कनु का गोट आग उठे न्यारे न्यारे हो के फिर आग में मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कित कछ मच कित उनको करत भज, कित अच वच हो सब पच उड़ जाहेंगे। कित नभ बीच अच पच को करेंगे भज, कित प्रत।

ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीर ताहि ते उपज सब ताहि मैं समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदी नाम कानी वासी के तक उदासी के प्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को परत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चोआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मडी मड लीप हारे भीतन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे।

सोगं नमो हंग नमातं नकर मंग नभर मंग नजन मंग नजातं अद्वैखं अपेखं जोनी सरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेयं परापरं प्रज्ञा प्रकाशीय छेदं गच्छयाद अद्वै अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आदभंगे नमो आदभंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपायु सारे गड़े फेर मेटे बनाए अगाधे अभयाद अद्वै अविनाशी परेयं परापरं पूर्ण प्रकाशी न आदंग न व्याधंग अगाधंग स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छ विभूति न जन्म न मरण न वर्ण न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र स्वभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग अपेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो निय छयाद अद्वय जोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग भय नृपिखादंग अछेदंग अभेदंग कर्मंग कालंग खंडंग भंडंग प्रचंडंग बालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न केहंग न भर्मंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न भेदंग न भर्मंग सदेवंग सदा सिद्ध वीरदंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे नृयुक्तं प्रभाद अनुक्तं प्रतापे अयुक्तं गच्छयाद अविक्तयतावे विभुक्तं गच्छयाद अच्छ स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहं न गेहं न शोकं न शाकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न बर्मं न सर्मं न चाके न बर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न

जोग जोग तंग भूम की भुगत मैं भरम भुगतंग कहूं देव कन्या कहूं दानवी हूं कहूं जज विद्याधरे मानवी हूं कहूं राजसी हूं कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि की पृष्ठ की ऋष पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम बानी कहूं ओक की काव कथा कहानी कहूं अद्रसारं कहूं बदर रूपं कहूं मत्र बानी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टाचार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान के गीत गावे कहूं शुद्ध शेखं कहूं ब्रह्म धर्मं कहूं वृद्ध अवस्था कहूं बाल कर्मं कहूं ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूं नेह देहं कहूं त्याग गृहं कहूं जोग भोगं कहूं रोग रागं कहूं रोग हर्ता कहूं भोग त्यागं कहूं राज

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप अनासन तुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनुभूत तेज अंशिजात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धरम जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र प्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं प्योतपान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय नेह गेह नहीं चिन्ह चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृमात जय नाम धाम नहीं वर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं शत्रु साध जय त्रास वास नहीं देह नास जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्षय स्वरूप अक्षय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेब जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम परखा सहंत कई कल्प एक आसन बितंत कई जतन जोग बितया विचार साधंत तद पावतन पार कई उर्ध बाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र दुचरंत वेद कई कोक काव कथत कतेब कई अग्नहोत्र कई पौन आहार कई कर्त कोड मृत को आहार कई कर्त साक पै पत्र भच्छ नहीं तदब देव हो वत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्नहोत्र।

तुम कहो देव सर्वं विचार
छत्र के तलैया छत्र छत्र के धराया छत्र के धराया छत्र तलैया महा सदैया के सदाल है गंतनिया के देवैया महा मार के बंडैया नव सारी के देवैया के बंडैया जम जम लहन है बंडैया रुद डेढ़ जमरिया और रुद के बंडैया मत के बुद्ध के देवैया के मार के के मान के ज्ञान हम के ज्ञान महा के मन का ज्ञान के ज्ञान रूप काल का मन का बोल महा के काल भंदिर बकाल है काल महा काल पूर्व बिन पार भव है गुला है मन पूर्व बिन पार भव दे गुण गावल दे गुण गा जो के जो सदा बिते सना मन है जो बंदे यार गंगा चलत मंदिर के

कि बाप हो नमाय ताकि पूर्ण प्रभा के सुझटा के अनुमानी है तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानी है तेज हूँ को तार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है कामना की खान है के साधना के सान है विरक्तता की बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनी मन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता के वासी है जो हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को पास है के बुद्ध हूं को घर है देवन को देव है निरंजन अभेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया है ईमान को दिवैया है जंजाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है नर है विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाइय न पार पार वार हूंगो पार जगो की जत विचार तो विचार को निवास है हिंगुला हिमालय का वह बसी हलब देव पूर्वी न पार पव या सत्य नाश है देवन को देव महादेव हूं के देव है निरंजन अभेव नाद अद्व अविनाशी है अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूं के देवनाद भूम के भुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूं के साजा महाजोग हूं को जोग है धरैया ध्रुम छाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरा वध छाछ किसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्री के कूल के हंसनी से सिहारू महीरा सिंह सेना बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सूरसी सुरंगाबाद नी के रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ की रत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंगाबाद नी के सोहियत है हिमा से हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रगिर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहारी की ओजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी सके दुरंगी मकरान के प्रदंगी तेरे गीत गायत है बकरी गंधारी गोर गखरी गर्दे जाचारी पवन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठौर मैं विराज जहां जहां जाइयत है पूर्ण प्रताप जंत्र मंत्र दे

सतगुरु महाराज जी कहिंदे कल्ला क्यों कि मैं तेरियां इक्की कुल्लां तारूं। सोए साध संत जी सारी गल प्रेम दी है, जिन प्रेम की ओ तिन ही प्रभ पायो। ते आपां जिथे इन्नी दूर तों यात्रा करन दे लई तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब विखे पहुंचे हैं, ते इथों साध संत जी कुछ बचन आपां सतगुरु महाराज जीआं दे पल्ले बन्नीए तां यात्रा अपनी कीती सफली है। सो साडे नाल साध संगत जी बड़े ही सत्कारयोग बाबा अजीत पाल सिंह जी, जिन्हां नूं संगतां बाबा पाली जी करके जानदियां ने, बड़े ही प्रेम वाले बाबा संतोख सिंह जी लुधियाणे तों, बाबा रविंद्र सिंह जी मछली कलां तों, बाबा रणजोत सिंह जी संप्रदाय राड़ा साहिब। ये अज रात्रि दे दीवान राड़ा साहिब वाले महापुरख अते नानक सर वाले महापुरखां दी याद दे विच रात्रि दे दीवान रखे गए ने। जिन्नियां भी संगतां पहुंचियां ने सारिआं ने लाहा लैणा। आओ हुण अगला समां आपां सरवण करिए, आखरी धारना पढ़ के समाप्ति वल वधदे आं जी। सारिया संगत

0: मेरी मत थोड़ी, मैं राम विसारू। आप संगतां नूं पता है भी आप जी दे नाल लंबे समय तो सेवा कर रहे, पर मैं बाबा जी का वचन नहीं मोड़ सकया, क्योंकि बाबा जी बहुत प्रेम कर रहे। कहते को शोभा ने देखा ही प्रभु, कहण दी गल नहीं दिखदा है, पर गुरु के प्यारियो जे साडे वड्डे भाग जागे, असी गरीब नवाज कलगी तर सच्चे पातशाह, गरीब नवाज राजन के राजा महाराजन के महाराजा, ऐसो राज छोड़ी और दूजा कौन दे आई। हे गरीब नवाज कलगी तर सच्चे पातशाह जी, तुहाडे तो वड्डा कोई नहीं, सिख दा पातशाह दे दरबार दे अगे भाव मक्के तो अगे उजाड़ हुंदा है, ते साडा सिखां दा इह वड्डा केंद्र, इत्थे सारी संगत आई। गरीब नवाज आया दूरों चल के, मैं तक्की तो शरण आए जी, आसा रखी चित में, मेरा सबे दुख गवाए। गुरु के प्यारे कहना नहीं चाहिए, सिख हो तुसी बोलो जी वाहेगुरु, तुहाडे अंदर जे प्यार होवे ते आवाज पातशाह दी तुहाडी रसना ते आनी चाहीदी है। मैं पूरा जोर ला के बोलदा, क्योंकि मैं हुक्म दे विच वा, भाग जागी भाग हुआ गुर संत मलाया, प्रभ अविनाशी घर मैं पाया। बड़े भाग जागे है साडे, असी सिखां दे घरे जन्म लिया, पर गल इत्थे मुकदी नहीं। मारे कहिंदे सेवा करनी ओ चंगी, जिथे आवे याद प्यारा। कहिंदे सेवा केड़ी करनी, आपां सारे सेवादार बणे आ। मारे कहिंदे ओ सेवा कर जिथे तेरी चित आत्मा दे परमात्मा दा मेल है। गुरु के प्यारे ये बड़ी सूखम है, छिन विच नाराज हो जांदी छिन विच बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि रूह का सुभाव है। किसी ने चंगा किया वाह वाह कीती, ए रूह बड़ी खुश हो जाती, किसी ने ओजा शब्द बोलता रूह कलप जाती। रूह की गल पातशाह ने गुरु के प्यारे सानू बाणी विच समझाना कीता है। सिखां दी तोर कह जी है, सिखां दी सोच कह जी है, सिखा ने खाना किवें है, सिखा दा भाव गुरु के प्यारे सिखी सिखिया सारे गज के बोलो। जेडे बाणी नाल प्रेम करदे आ ओ रसना नूं पवित्र जरूर करियो, क्योंकि असी तख्त साहब ते बैठे हां गुरु के प्यारे गुरु की हजूरी विच, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की गोद विच बैठे हां, किते सुते ना रह जाइए, किते गैर हाजर हाजर गैर हाजर ओ अवस्था ना बन जावे। ओही दरबार है कलगी तर पातशाह महाराज, हाजिर बैठे है, साड़ी औकात नहीं इन्हां दे दरबार विच बोल सकीए, जो बुलावै तो बोला सुन। ये भाग जागे जदों गुरु के प्यारे हो, पहला आप जी नूं इतिहास तो ज्यादा पता है, सत्ते ते बलवंडा जी की वार भी आती है। वह महाराज जी ने बहाना बनाया सी, क्योंकि तुहानू ते सानू अपनी गोद का शिंगार बनाया। महाराज ने सारिया नू जोड़ी बाजे फड़ाते, तांती साज फड़ाते, गरीब नवाज ने कहिंदे तुसी गाओ, तुसी बैठे सी गुरु के प्यारे उदों ही पातशाह दी हजूरी विच। शरीर बदलदे आ जोतां ओ ही चली जांदियां, क्योंकि महाराज दे सिख किते गए नहीं। महाराज कहिंदे सिखी सिखिया गुर विचार, कहिंदे गुरु दी विचार सिखनी है गुरु दे सिख ने। सानू कहण दी लोड़ नहीं भी हुक्मनामा साहब हुंदा ते बह जाओ, अरदास हुंदी है खड़ जाओ, कहण दी लोड़ नहीं, क्योंकि असी सिख हैं। सिखना कलगी तर पातशाह दे चरणां विच आए हां, ते गुरु के प्यारे सारिया ने अरदास करनी है, दियो सजण आसीसड़ियां जो होवे
1: साहिब सो मेल।
0: ये सारे ने हिरदे नाल हुण धारना पढ़नी है, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਨਕ ਸਰ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਵ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤਰਸ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ
1: ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ।
0: ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਮੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਰਿਓ ਸਾਰੇ, ਫਿਰ ਰਾਜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਸਾਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ।